मन सोया माया विस्माद, इस गृह में कोई जागत रहे। साबत वस्तु अपनी लहरा, सगल सहेली अपने रसमाती, गृह अपने की कबर न जाती। मूसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। उनते रख है बाप न माई, उनते रख है मीत न पाई। दर्ब सियाणप ना ओ रहते, साध संगो दुष्ट वस होते। कर कृपा मह सारंग पान, संतन धूर सर्व निदान। साबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागै पार ब्रह्म कै रंग। सो जागै जिस प्रभु ने कृपाल, ए पूंजी साबर धन माल। रहाओ दूजा गौड़ी गुवारे रे महला पंजमा, जा कै बस खान सुल्तान, जा कै बस है सगल जहान। जा कै किया सब पिछ होए, तिस्ते बाहर नाही कोई। कहो बिनंती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निवाहे। रहाओ सब ते उच जाका दरबार, सगल पद जाका नाम आधार। सर्व व्याप्त पूर्ण तन, जाकी शोभा कटकट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा ढह, जिस सिमरत जम किशु न कह। जिस सिमरत होत सुखे हरे, जिस सिमरत बूढ़त पाहन तरे। संत सभा को सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार। कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी गुवारे री महला पंजवा, सतगुर दर्शन अगुण निवारी। सतगुर पेट तह मैं मारी, सतगुर संग नाही मन डोलै। अमृत बाणी गुरमुख बोलै, सब जग साचा जो सत मैं राते। शीतल सांत गुरते प्रव जाते। रहाओ संत प्रसाद जपै हर नाम, संत प्रसाद कीर्तन गाओ। संत प्रसाद सगल दुख बिंदन दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे। संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध ऋण मजन सब धर्म। साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए अमरी जिंद। कृपा निध कृपाल त्याव, साध संगता बैठन पावो। मोह निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक नाम लया। गौड़ी गुवारे री महला पंजवा, साध संग जप्यो भगवंत। केवल नाम दियो गुरमंत, तज मन पै निरवैर। आठ पैर पूजै गुर पैर, अब मत बिनसी दुष्ट बिगानी।

सुन निदान जन कह हरनाओ पार ब्रह्म सौ लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मिटिया दयारा नानका प्रभ अपरिया पारा गौड़ी गुआरेरी महला पंजवां।

कवन सो पूजा तेरी करो, कवन सो बेद जित पव जल तरो, कवन तप जित तपिया होए, कवन सो नाम हमै मल खोए, गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल कहार, जिस कर कृपा

जाकै उना कछु नाहे हर सा प्रीतम कर मन मीत प्राण अंदर रखो सद चीत रहाओ रे मन मेरे तू ताको सेवा आद पुरख परम प्रदेव तिस उपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावै गुरमिल सोए गौड़े महला पंजवा मीत करै सोए हम माना मीत के करतब कुशल समाना एक आठ एक मेरा मन चीता जिस किच करना सो हमरा मीत रहा मीत हमारा वे प्रवाह गुर कृपा ते मोय सनाहा मीत हमारा अंतर जामी

पूरा आप मनमुख को लागो संताप गुरु गुरु जप मीत हमारे मुख उजल होवे दरबारे रहाओ गुर के चरण हृदय वसाए दुख दुश्मन तेरे हतै बुलाए गुर का शब्द तेरा संग सहाई दयाल पै सगले जी भाई गुर पूरा जब कृपा करी पंत नानक मेरी पूरी परी गौरी महला पंजवा अनक रसा खाए जैसे ठोर मोके जेवरी बांधे चोर मृतक दे साध संग बिहूना आवत जात जौनी दुख खीना रा अनक वस्त्र सुंदर पहराया ज्यों डरना खेत माहीं डराया सगल शरीर आवत सब काम निफल मानख जपै नहीं नाम कहो नानक जाको पै दयाला साध संग मिन पजै गोपाला गौरी महला पंजवा काल कलेस गुर शब्द निवारे अमन जान रहे सुख सारे पै बिन से निरपो हर त्याया साध संग हर के गुण गाया रहाओ चरण कमल अंतर तारे अग्न सागर गुर उतरे गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरा गुर काढ़े जन्म जन्म के टूटे

ਬਾਜ ਸਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਚੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਖਾ ਬਿਨਾਉ ਕਰਾਉ ਗੁਰਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਹ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇਵੜ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਹੈ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧਨ ਧਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਿਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸਤ ਬਨਿਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ ਉਡੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬੁਚਰੇ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸਭ ਧਿਆਵ ਹੈ ਸਭ ਧਿਆਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਭ ਜੀਉ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਘਾਟ ਘਾਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖਵਾਸੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭੈ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਤੂਟੀ ਜਮਕੀ ਫਾਸੀ ਜਿਨ ਨਿਰਭਾਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਾਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਾਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪ ਤਪ ਹੈ ਜਪ ਹੈ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖੱਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈ ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ ਜਿਸਨੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਿਖਾਣੈ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ
तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरडा पहिले निवासा पानी पावक तन है किया पंक जो मोह पग नहीं चाला हम देखा तह डूबियले मन एक ना चेत समूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलया रहाओ ना हाओ जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू ना ही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्रापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवचल तरण कै जन्म ब्रिथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा सरण परे की राख हो शर्मा जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा सरण परे की राख हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाह दसवीं चौपाई पुनराक्षस का काटा सीसा श्री असकेत जगत के ईसा पहुपन ब्रिस गगन ते पई सब हिन आन बधाई दई धन धन लोगन के राजा दुसन दाह गरीब निवाजा अखल भवन के सरजन हारे दास जान मोहे लेहो उबारे कब्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ द रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे तुष्ट सबैत्म काव हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरन कौ आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवरना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है आप हाथ द मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुत जू करी हो रच्छा राख ले हो मोहे राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुसन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा नमस्कार तस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जबद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मृत देह धार सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जा को भेव ना पावत भेदा ताकौ कर पाहन अनमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा कह विद सदा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी
कहूं फूल राजा होए बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा, सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवात तपाता, सकल मलेच्छ करो रणकाता। जे अस तुज तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित होया मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरैं तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह शबै सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग गेत में सरन तिहारी, आप हाथ दै लेहो उबारी, सर्ब ठौर मोहो हो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को शय करता। श्री अस्तुत जब पै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न दिसै ब्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग जो याहे सुरसना पावई, सुनै मूड़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कह। चौपाई संबत सत्र है, सहसपन जय अर्ध सहसपन तीन कह जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्रोपख्याने, त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे, 405 चरित्र समाप्त, मस्त शुभ मस्त अफजू। दोहरा दास जान कर दास पर, कीजै कृपा अपार, आप हाथ दै राख मोहे, मन क्रम बचन विचार। चौपाई मैं न गने सह प्रथम मनाऊं, किसन बिसन कबहू नह त्याऊं, कान सने पहचान न तिन सो, लिव लागी मोरी पग इन सो। महाकाल रखवार हमारो, महालोह मैं किंकर थारो, अपना जान करो रखवार, बाहें गहे की लाज विचार। अपना जान मजै प्रत परिय, चुन चुन सतर हमारे मरिय, देग तेग जग मैं दो चलै, राख आप मुहे और न दलै। तुम मम करहो सदा प्रतपारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा, जान अपना मजै निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, दास जान कर कृपा करहो मोहे, हार परा मैं आन द्वार तुहे। अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा, दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम तरों भगवत को ध्याना, बहर करों कविता बिद नाना, कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो, चूक होए कब लेहो सुधारो। कब्यो बाच दोहरा, जो निज प्रभ मो सो कहा, सो कह हाँ जग माहे, जो तेह प्रभ को त्याय हैं, अंत सुर्ग के अंत सुर्ग को जाहे। दोहरा हर हर जन दोई एक है, बिब विचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यो, जल ही बिखै समाहे। दोहरा जब आय स प्रभ को पेओ, जन्म तरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए। कब बाच दोहरा ठाड़ पेओ, मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय, पंथ चलै तब जगत मैं, जब तुम करहो सहाय। दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को, नित उठ त्याय हैं संत, अंत लहेंगे मुक्त फल पावहगे भगवंत। दोहरा काल पुरख की देह मो, कोटिक बिसन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा कते रव सस क्रोर जलेस। दोहरा राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई पाखत नेत, स्वर्ग बास रग बरकरा सगरी पुरी समेत। चौपाई जो एह कथा सुनै अर गावै, दुख पाप तेह निकट ना आवै, बिसन भगत की ए फल होई, आद ब्याद छवै सकै ना कोई। सम्मत सत्र है सहस पचावन, हाड़ विधि प्रथम सुख दावन, त्वे प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल प्री लहुल्ले हो सुधारा। दोहरा नेत्र तुंग के चरण तार, सतद्रव तीर तरंग, श्री भगवत पूर्ण कियो रकबर कथा प्रसंग। दोहरा साध साध जानो नहीं, बाद सुबाद विवाद, ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद।
सवैया पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आंख तेरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखान्यो। दोहरा

दान भरोसा दान दाना सर्वदान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पता रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता आजियो समूह गुरुद्वारा दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाण्यां दे माण नितान्यां दे तान न्योट्यां दी ओट हे अकाल पुरख सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दी कृपा बख्शिश द्वारा आप जी दे हजूर आप जी दी हजूरी विच गुरमत खालसा स्कूल रेंटन दे बच्चियां ने रह रास साहिब जी दा पाठ कीता सोधर चौंकी लाई कीर्तन कीता कथा विचारा हुईयां कविता पढ़ियां गईयां आप जी प्रवान करो जी अनेका पुलां चुका हुईयां दी माफी बख्शनी जी सारे मापियां सेवादारां अते बच्चियां दी हाजरी प्रवान करनी जी ओ रा प्रसाद दी देह नूं भोग लाओ अते पावन हुक्मनामा बख्शो सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह दोरा आ गया पई अकाल की सब सिखण को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को मिल बोझ है।

आगास ओढ़क ओढ़क पार थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कते बास लू एक तात लेखा हुए तलिही है लेखा हुए विनास नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप साला ही ति सुरत ना पाईया नदिया तैवाह पवह समुंद ना जानी है समुंद साह सुलतान गिरह सेती माल तान कीड़ी तुल न हो बनी जेत मन हो न विसर है।

मरहै न ठगि जाहि। जिन कै राम वसै मन माहि, तिथै भगत वसै के लोक। रहै नंद सच्चा मन सोई, सच खंड वसै निरंकार। कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर पंड। जे को कथै तन तनंत, तिथै लो लो आकार। जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विगसै कर विचार। नानक कथना करड़ा सार, जत पाहारा धीरज सुनियार। आहरण मत वेद हथियार, पौख लागन तपताओ। भांडा पाओ अमृत तित ढाल, घड़ी शब्द सची टकसाल। जिन कौ नदर कर्म तिन कार, नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तत् महाता। दिवस रात दोए दाई दाया, खेला सगल जगत। चंगे आईया बुरे आईया, वाचा धर्म हदूर। करमी आपो आप।

प्रछंद प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता सावल छंद प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपुते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्रा न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं श्रीक है मितो मीक है सदैवं प्रभा है जय है अजा है भगवती छंद प्रसाद के जाहर जुहूर है के हाजर हजूर है मेसुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी देहंद है के राज करहंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरी फुल सिकन है हिरा सुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्बुल गवन है मेसुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परमईस है समस्तुल अदीस है अदेसुल अलेख है हमेसुल अपेख है जमीनुल जमा है मीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलं प्रकाश

के अतलंग अनंग हैं के मित्तो भंग हैं मद भार छंद प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बरा गंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बरनरा मंड अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अन छेजांगा सन भंग उपमा पार गत मित उदार जल थल मंड दिस विस भंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अना त्रित तरतुरा सा जान बाहु एक सदा ओंकाराद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबरा काल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आज जनम बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट पारा डीठ धर्मत पीठ कर मान ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वंपर है सर्वंकर है सर्वपास्या है सर्वनाश्या है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है

प्रेत हैं, निर्णायक हैं, खलकायक हैं, विश्वम्भर हैं, करुणालय हैं, निर्भनायक हैं, सर्वपायक हैं, भवभंजन हैं, रगंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हर्ताहर हैं, परमात्मा हैं, सर्व आत्म है, आत्मवास है, जस के जास है, पोजंग प्रयात छंद। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे,

एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया जिन तुरहो लिखया आया एक फिर है कनेरे कर है गल्ला गली किनै ना पाया कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो पवित संगत सबाईया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजै बिन सहजै सहसा न जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसा जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन धोव हो शब्द लग हो हर स्यो रह हो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एह सहसा इव जाए जियहु मैले बाहरहो निर्मला बाहरहो निर्मला जियहु ता मैले तिनी जन्म जुआ हारिया एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मन हो विसारिया वेदा मह नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर है जोबे तालिया कह

श्लोक मेला पहला सिमन रुख सराय रायत दीर्घ यात्र मोचे हो जे आवे आस कर जाए निरा से केत पल फिकी बुल बत फिकी कमना में पत मिटतनी विना निका गुण चिंगाइया तत सब कुने में आपको पर कुने में न कोई धर तराजु तो लिए ने में सगोरा हो ये प्रादिव दुलाने में जो अंतमिन गा इसी स्नेवा क्या थी है।

सर्वे तो जाता है कहो मान लै मेरो रहाओ संपत रथ तन राज सिंह तन नेहु लगायो काल पास जब गल परिसो भयो परायो जान बूझ के बावरे तै काज बिगारियो पाप करत सकत्यो नहीं नहीं गर्भ निवारियो जेवित गुरु उपदेसिया सो सुन रे भाई नानक कहत पुकार कह गो प्रभु शरणाई तलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वेदक ते इफ़ता भाई दिल का फिक्र न जाए टप दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदाए।

द्रोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बकाए, हक सच खालक खलक से म्याने, श्याम मूर्त नाहे, असमान म्याने लहंग दरिया, गुजल गुसल करद न बूद, कर फकर दायम ला चश्मे, जह तहां मौजूद, अल्लाह पाक पाक ऐसा करो जे दूसर होए, कबीर करम करीम का ओ करे जाना सोए, नाम देव जी मैं अंधले की टेक, तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा रहाओ, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दर पेश तू मनी, दरियाओ तू देहांत, तू बसियार तू द।

लहर को बिक्स फूल बैठा साध जना का दर्शन लेठा कबू न समझे ज्ञान गवारा पौर बोर लट्यो जंजार रहा बिखे नाद करण सुन पीना हर जस सुनत आलस मन कीना दृष्टना हीरे पेखत अंधे छोड़ जाए झूठे सब धंधे रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कर पावो साध संग दीजै तो किस पाये जो हो जय रेना जिसे बजाए तिस नाम लेना राव सूही मल्ला पंजवा घर में ठाकुर नदरन आवै गल में पाहण ले लटकावै भर में पूला साकत फिरता नीर बरोले खप खप मरता रहाओ जिस पान को ठाकुर कहता ओ पाहण ले उसको डुबता लूण गुण हार लूण हरामी पाहण नावन पार गरामी गुरमिल नानक ठाकुर जाता जल थल मैयल पूर्ण में धाता सूही मल्ला।

सिमर सिमर ताको हूँ जीवा चरण कमल ते तोते पीवा सो हर मेरा अंतर जामी पग जना के संग स्वामी रहाओ। सुन सुन अमृत नाम ते आवा आठ पैर तेरे गुण गावा पेक पेक लीला मन आनंदा गुण अपार प्र परमानंदा जाके सिमरन कछ पौ ना व्यापै सदा सदा नानक कर जापै सोई मल्ला पजमा गुर के बचन हृदय ध्यान धारी रसना जा बचतो कनवारी सफल मूर्त दर्शन बलहारी चरण कमल प्राण मन प्राण धारी रहाओ साध संग जन मरण निवारी अमृत खात सुन करन आधारी काम क्रोध लो मोह तजारी दृढ़ नाम दान स्नान सुचारी को नानक के तत विचारी नाम नाम जप पार उतारी सूही मल्ला पंजवा लोभ मोह मगन अपराधी करण हार की सा सेवना साधि पतित पावन प्रभ नाम तुम्हारे राख लियो मोहिंद्र गुणी हारे राव तू दाता प्रभ अंतर जामी काची दे मानो अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया दिन संग इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भंजन जग जीवन हर आया सगल त्याग नानक शरण आया सूही मल्ला पंजवा पेखत चाखत चे कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वसत को जान दूरे पापी पाप कमाई सो किछ कार जित छुटै पुरानी हर हर नाम जप अमृत बाणी रहाओ कोल महर सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु न जाता रखै पुचार माटी का पांडा आतक चील मेरे जम डांडा काम क्रोध लो मोह मादा महाकृत मैं निगर तर जाता नानक की अरदास सुनीजै डूबत पाहन प्रभ मेरे लीजै सूई मल्ला पंजवा जीवित मरै बुझै प्रभ सोए तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन इउं दुत्तर तरियै मिल साधु हर नाम उचरिय रहाओ एक बिना दूजा नहीं जाने कड़कर अंतर पार ब्रह्म पछाने जो किछ करै सोई पल माने आद अंत की कीमत जाने कौ नानक ते जन बलहारी जाके हृदय वसे मुरारी सुई मल्ला पंजवा गुर परमेश्वर करने हार सगर सठ को दे आधार गुर के चरण कमल मन ते आए दुख दर इस तन ते जाय राओ पवन जल डूबत सतगुरु काढ़ जन्म जन उठा टूटा गंड है गुर की सेवा करो दिन रात सुख सहज मन आवै सांत सतगुर की रेण वड भागी पावै नानक गुर को सतगुर जावै सुई मल्ला पंजवा गुरे अपने ऊपर बल जाइए आड़ पर हर हर जस गाइए सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी सगलता का अंतर जामे रहाओ चरण कमल सो लागे प्रीत साची पूर्ण निर्मल रीत संत प्रसाद वसे मन माए जन्म जन्म के किल विक जाई कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला सुही मल्ला पंजवा दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा एह बिनंती सुन प्रभ मेरे दे नाम कर अपने चेरे रहाओ अपने शरण राग प्रभ दाते गुरु पुजा के निवर ले जाते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल

दर्शन हर देखण कै ताई कृपा करें ते सतगुर मेलै हर हर नाम ते आई रहाओ। जे सुख दे तां तुझे अरादी दुख भी तुझे ते आई, जे भुख दे तां तिही राजा दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी ढोवा जो देवें सुखाई। नानक गरीब टह पया दुआरे हर मेल लै हो वड्याई। अखी काढ़ तरी चरणा तल सब धरती बिर मत पाई। जे पास बहालें तां तुझे आराधी, जे मार कटें भी त्याई। जे लोग सलाहें तां तेरी उपमा, जे निंदे तां छोड़ न जाई।

हित मार्ग चले भाईड़े गुर कहे सुकार कमाए जियो त्यागे मन की मतड़ी वे सारे दूजा पाओ जियो यूं पावे हर दरसावड़ा ना लगे तत्ती वाओ जियो हूं आपू बोल न जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया पसाओ जियो मैं बौड़ न तृष्णा भुखड़ी हो रजा तृत गाए जियो जो गुरु दी से

काया कुमलानी कुआर कन्या जैसे कर संगारा क्या रलिया माने बाज बतारा काग उड़ावत पूजा परानी कह कबीर एक कथा सुरानी सुई कबीर जी ओ अमल सरानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या था खटिया कहा गवाया सलो सताब दीवान बुलाया चल दर हाल दीवान बुलाया हर फरमाउन दर गह खाया रहाओ करो अरदास गावक बाकी लिहो नबीराज की राती किश भी खर्स तुम्हारा सारो सुबह निवाज सराए गुजारो साध संग जाको हर रंग लागा तन तन सो जन पुरख उस बागा ई तूत जनसदा सवेले जन पदार्थ जीता मोले जाग सोया जन्म गवाया माल तन जोड़िया पया पराया कहो कबीर ते नर भूले खसम सार माटी संग रूले सोई कबीर जियो ललत थाके नैन सरवन सुन थाके थाकी सुंदर काया जरा हाक दी सब मत थाकी एक ना थाक समाया भावरे तै ज्ञान विचार ना पाया बिरथा जन्म गवाया रहाओ तागले प्राणी तेजा सेव जाबला कटमै सासा जे कट जाए ता पाओ न जासी हर के चरण नवासा जिसको शब्द बसावा अंतर चुका तुझे प्यासा हुक्मै बुझा चौपड़ खेलै जिन जिन ढाले पासा मन जिन ढाले पासा सो जन जान भजै अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबू न हारै ढाल जो जन है पासा सुही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हाला जिमी नाई मैं किसकी बोई ऐसा देन दुखाला हर के लोगा मोको नित दशा बटवाओरी ऊपर पूजा कर मैं गुर पै पुकारिया तिन्हों लिया बारी हाओ नो डाडी दस मुस्फतावे रियत बस न दे डोरी पूरी बापे नाही बबेटा ला लई भत्र कर कर पुछ संभाया उन दिया नाम लिखाई तार मरा एक आदत सोदया बाकी रजमना खाई संता को मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सोगुर पाया जाका ना वेको राग सोही बाणी श्री रविदास जियो की एको अहंकार सतगुर प्रसाद सहकी सार सुगण जाने तजो मान सुख रलिया मन तन मन देना अंतर पाकै अवरा देखना सुना सबाकै सुख जाने पीर पराई जाके अंतर दद ना पाई रहाओ दुखी दुहागण दोए पक ही नी जनाहा नंतर भगत न कीनी पुरश लादका अंत हेला सांगना सेते साथी गौना केला दुखिया दर्द अंतर आया बहुत प्यास भावना पाया कहर दास सरप्रा तेरी ज्यो जानो त्यों कर बदमेरी सोही जो दन आवै सोधन जाई करना कूच रहन थरना संग चलता है हम भी चलना दूर गवन स्वरूप पर मरना क्या तू सोया जागे आना तै जीवन जग सच कर जाना रहाओ जिन जियो दिया सुनावै सबकट भी तरहार चलावै कर बंदगी छाड़ मैं मेरा हृदय नाम संवार सवेरा जन्म सराणू पंथना सवारा सांझ परिदै दे संध्यारा कहर उदास नदान दवाने चेत सुनाए दुनिया फन काने सूही उच्चे मंदर सार सोई एक भरी घरी फन ऐना कोई एतन ऐसा जैसे घास की टाटी जल गयो घास रल गयो माटी रहाओ आई बंद कटंप सवेरा ओ पी जान पी लागे काट सवेरा करकी नार वैतन लागी ओ तो भूत भूत कर भागी कहर उदास वै जग लुटिया हम तो एक राम कह छुटिया एको अंकार सतगुर प्रसाद राग सुही बाणी शेखपुरी जी की तपता लो लो हाथ मरो रो बावन हो सो सो लोर तैसा मन मैं किया रोस मुझ औगण स ना ही दोस तै साहब की मैं सारना जानी जोबन कोई पाचा बजता नहीं रहा।

करखिल पामो हे मार्ग पावो सा संगत कै अंचल लावो क्यों तरिए बिखिया संसार सतगुर बोहत पावे पार रहाओ पवन चुलारे माया दे हर के भगत सदा थिर से हरग सोगते रहे निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्व प्रियंगा हम में पचे दीपक देख पतंगा सगल सिगार करे नहीं पावे जा होए कृपालता गुरु मिलावे हों फिरऊ दासी मैं इक रतन दसाया निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर तिस में लाल गुर खोलिया पड़दा देख पई निहाल जिन चाख्या तिस आया साध ज्यो गूंगा मन माए बिसमाद आनंद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आक समाया बिलावल महला पंजवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव बिघन न लागे जप अलख अपेव तरत पुनीत पई गुन गाए दुर्त गया हर नाम त्याए रहाओ सबनी थाई रव्या आप आद जुगाद जाका वड परताप गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघन होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सदगुरु तूठे पार ब्रह्म प्रभ पे रखवाले जित है कित है दिसे नाले नानक दास कसम प्रतपाले बिलावल महला पंजवा सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे अगनत गुण ठाकुर प्रभ तेरे मोह अनाथ तुमरी सरनाई कर कृपा हर चरण ते आई दया करो बसो मन आए मोह निर्गुण लीजे लड़ लाए राओ प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़ हर सेवक नाही जम पीड़ सर्व दुख हर सिमरत नसे जाके संग सदा प्रभ बसे प्रभ का नाम मन तन आधार बिसरत नाम होवत तन चार प्रभ चित आए पूरन सब काज हर बिसरत सब का मोहताज चरण कमल संग लागी प्रीत बिसर गई सब दुर्मत रीत मन तन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कै कर सदानंद राग बिलावल महला पंजवा कर दूजा यानड़।

अवर स्यान पाबिरथियाँ प्यारे राखन को तुम एक राहो सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे सोजन होत निहाला गुर की सेवा सो कर प्यारे जिसनु होए दयाला सफल मूरत गुरुदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन अपना प्रभ जाता हर नाम राधे नाम वखाने हर नाम में ही मन राता सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा नानक की बेनंती स्वामी तेरे जन देखन पावा वड़पा की से काढ़िए प्यारे सतसंगत जीना वासो अमृत नाम आराध्य निर्मल मने होवे परगासो जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जमकी खाने तिना परापद दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाण पूछे अपार बेअंत स्वामी कौन जने गुण तेरे गावते उधरे सुनते उधरे बिन से पाप गरे रे पशु प्रेत मुगद को तारे पाहन पारी उतारे नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे बिलावल महला पंजवा बिखे बन फीका त्याग रि सकिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बूढ़ गई सगली सुखी न होवत जियो मान महत ना सकत ही काई सादा दासी थियो नानक से दर शोभा वंते जो प्रभ अपनों की अपने कियो हर चंदोरी चित प्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संग न चालति सखिए अंत तज जावत माया रस पोगन अत रूप रस माते इन संग सुख न पाया तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाए बसो बड़ पाग नि सखिए संता संग समाइए तह दुख ना पूख ना रोग व्यापे चरण कमल लिवलाये तह जन्म ना मरण ना आवन जाना ने चल सरनी पाइये प्रेम बिछो ना मोह व्यापे नानक हर एक त्याये दृष्ट तार मन बेद्या प्यारे रतड़े सहज सुभाए सेज सुहावी संग मिल प्रीतम अनद मंगल गुन गाए सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच पुजाए नानक अचरज अचरज स्यो मिलया कहना कछु न जाए राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक रूप सगलो पासारा आपे बनज आप व्योहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए जत जत जाइए तत दृष्टाए राओ अनिक रंग निर्गुण इक रंगा आपे जल आप ही तरंगा आप ही मंदर आपे सेवै आप ही पुजारी आप ही देवा आपे जोग आप ही जुगता नानक के प्रभ सद ही मुक्ता बिलावल महला बनवा आप उपावन आप सदरना आप करावन दोष न लेना आपन बचन आप ही करना आपन विभो आप ही झरना रहो आप ही मस्त्र आप ही बुलना आप ही अचल न जाए छलना आप ही गुप्त आप प्रगटना आप ही कटकट आप अलिपना आपे अवगत आप संगरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवा पूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुर बड़ पागी पाया सिमरमना राम नाम चितारे बस रे हिरदे गुर चरण प्यारे रहो काम क्रोध लो मोह मन लीना बंधन काट मुकत गुर कीना दुख सुख करत जन्म फुन मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया अग्न सागर बूटत संसारा नानक बहा पकर सतगुर निस्तारा बिलावल महला बंजवा तन मन तन अरपो सब अपना कवन सुमत जित हर हर जपना कर आसा आयो प्रभ मागन तुम पेखत सोबा मेरे आगन रहाओ अनिक जुगत कर बहुत विचार्यो सा संग इस मने उधार्यो
मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जा लय मिलाई। नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, को नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न पाया, साध संग सब दुख मिटाया। रव रया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख न व्यापे। रहो तिखा भूख बो तपत व्यापिया, शीतल पे हर हर जस जाप्या। कोट जतन संतोख न पाया, मन तृप्ताना हर गुण गाया। देवगत प्रभ अंतर जामी, नानकी बेनंती स्वामी। बिलावल महला बनवा, गुरपुरा वड पागी पाये। मिल साधु हर नाम त्याये, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना। किलबिक काटे पच गुर के चरना। रहो अवर करम सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार। सिमरत सासत बेद बिचारे, जपिए नाम जित पारि उतारे। जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तुर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय में चीना, सकल मनोरथ पूरन आसीना। संत जना का मुख उजल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहो अंधकूप ते कर घैलीना, जय जय कर जगत प्रगटीना। नीचा ते ऊच ऊन पूरीना, अमृत नाम हरस लीना। मंत्र निर्मल पाप चल खीना, कहो नानक प्रभ प्रसीना। बिलावल महला बनवा, सगल मनोरथ पाइये मीता। चरण कमल स्यों लाइये चीता, हों बलिहारी जो प्रभ त्यावत। जलन बुझे हर हर गुण गावत। राओ सफल जन्म होवत बड़ पागी, सासंगरा में लिव लागी। मत पत तन सुख सहज आनंदा, इक निमख न विसरो परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास कनेरी, पनत नानक सरन प्रभ तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोह निर्गुण सब गुने बिहुना। दया तार अपना कर लीना, मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया। कर कृपा प्रभ कर मैं आया। रहो भगत बछल पै काटन हारे, संसार सागर अब उतरे पारे। पतित पावन प्रभ बिरत बेद लेख्या, पार ब्रह्म सो नैनो पेख्या। सा संग प्रगटे नारायण, नानक दास अब दुख पलायन। बिलावल महला पंजवा, कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा। प्रभ विनाशी अलक अभेवा, गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे। ऊच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरंपर ठाकुर मेरे। रहो एकस बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा। आपो कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवे सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ दिन ही पाया। बिलावल महला बनवा, मात गर्भ में हाथ दे राख्या। हर रस छोड़ बिख्या फल चाख्या, पाज गोबिंद सब छोड़ जंचाल। जब जम आए संघारे मुड़े, तब तन बिनस जाए बेहाल। राओ तन मन तन अपना कर था प्या, करन हार इक निमख न जा प्या। महामो अंध कूप परया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरया। बड़े पाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला बनवा, मात पिता सुत बंद पाई। नानक होआ पार ब्रह्म सहाई, सुख सहज आनंद कने। गुर पूरा पूरी जाकी बाणी, अनक गुना जाके जाए न गणे। रहाओ सगल सरंजाम करे प्रभ आपे, पय मनोरथ सो प्रभ जापे। अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी पई सिमर सिमर विधाता। सात संग नानक रंग माण्या, कर आया पूरे गुरु आण्या। बिलावल महला बनवा, सर्व निधान पूरन गुरुदेव। रहाओ हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खुवार साकत नर थीए। राम नाम हो आर खुवारा, छक मारो साकत बेचारा। निंदा कर कर पचे कनेरे।

सतगुर प्रसाद कवन संजोग मिलो प्रभ अपने पल पल निमक सदा हर जपने चरण कमल प्रभ के नित त्यावो कवन सुमत जित प्रीतम भावो राव ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे हर नानक बिसर न काहू बेरे बिलावल महला पंजवा चरण कमल प्रभ हृदय त्याए रोग गए सगले सुख पाए गुरदुख काट्या दीनो दान सफल जवन जन्म जीवन परवान रहाओ अखत कथा अमृत प्रभानी कहो नानक जप जीवे ज्ञानी बिलावल महला पंजवा सांत पाई गुर सत गुरु पूरे सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ ताप पाप संताप बिनासे हर सिमरत किलबिक सब नासे अनत करो मिल सुंदर नारी गुरु नानक मेरी पैज सवारी बिलावल महला बनवा ममता मोह त्रो मद माता बंधन बाध्या अत बिकराल दिन दिन छिद छिजत विकार करत औद फाही फाथा जम के जाल तेरी शरण प्रभ दीन दयाला महाबिखम सागर अत पारी उधरो साधु संगर वाला रहाओ प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी जियो पिंड सब तुमरा माल प्रम के बंधन काटो परमेश्वर नानक के प्रभ सदा कृपाल बिलावल महला पंजवा सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिरद समारया साजना होए कृपाला बिकसे सब परवारया कारज सतगुरे आप सवारया बड़ी आरजा हर गोविंद की सुख मंगल कल्याण विचार आ रहाओ वंद त्रिन त्रिभुवन हरया होए सगले जी सदारया मन इच्छे नानक फल पाए पूरन इच्छे पुजारया बिलावल महला पंजवा जिस ऊपर होवत दयाल हर सिमरत काटे सो काल रहाओ साध संग पजिए गोपाल गुन गावत तूटे जमजाल आपे सतगुर आपे प्रति

जो जो निंद करे इन ग्रहण की तिस आगे ही मारे करतार। नानक दास ताकी सरनाई जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा ताप संताप सगले गए बिन से ते रोग। पा ब्रह्म तू बख्श्या संतन रस भोग। रहो सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग। गुन गाओ नित राम के एह अवखद जोग। आए बसो कर देश में ए पले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न पे लह गए वियोग। बिलावल महला पंजवा काहू संग ना चाली माया जंजाल। उठ सिधारे छत्रपत्र छत्रपत संतन के ख्याल। राव अहम बुद्ध को बिनसना एह तुर की टाल। वह जोनी जन्मे मरे बिखिया बिगराल। सत बचन साधु कहे नित जपे गोपाल। सिमर सिमर नानक तरे हर के रंग लाल। बिलावल महला पंजवा सहज समाध आनंद सुख पूरे गुर दीन। सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन। रहाओ जय जयकार जगत्र में लोचे सब जिया। सुप्रसन्न पहे सदगुर प्रभ किछ बिघन न थिया। जाका अंग दयाल प्रभ ताके सब दास सदा।

मित्र मंडल जग साजा जो बालू कर बार बिन सत बार न लागे जो कागद बुंदार सुन मेरी मनसा मने माए सत देख बिचार सिद्ध साधक गृह जोगी तज गए कर बार रहाओ जैसा सुपना रेन का तैसा संसार रिष्ट मान सब बिन से क्या लगे गवार कहाँ सुमाई मीत है देख नैन पसार एक चाल से प्रभ अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख पैज मुरार बिलावल महला पंजवा लोकन किया बढ़ियाया बैसंतर पागो ज्यो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो ज्यो प्रभ ज्यो दयाल होए तो भगती लागो लपट रहो मन बासना गुर मिल त्यागो रहाओ करो बेनती अतकनी एह जियो हो मागो अर्थ आन सब वार्या प्रह निमक सुहागो पंच संग गुरते चुटे दोख आर रागो हृदय प्रगास प्रगट पया निस बासर जागो सरन सुहागन आया जिस मस्तक पागो कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो बिलावल महला पंजवा लाल रंग तिसको लगा जिसके वड़ पागा मैला कदे न हो वही न लागे दागा प्रभ पया सुखदाया मिलया सुख पाए सहज समाना पीतरे छोड़या न जाए राओ जरा मरा न व्यापी फिर दुख न पाया पी अमृत आघान्या गुरे अमर कराया सो जाने जिन चाख्या हर नाम अमोला कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला सफल दरस तेरा पार ब्रह्म गुण निज तेरी बानी पाव

हम अवगन कर असंख निद तुम निर्गुण दाता रे, दासी संगत प्रभु त्यागे करम हमारे, तुम देवो सब किश दया तार हम अकृत कनारे, लाग परे तेरे दान स्यो ने चित कसमारे, तुझते बाहर किश नहीं पव काटन हारे, को नानक शरण दया।

चरण पखारो कर सेवा जे ठाकुर पावे, होए कृपाल दयाल प्रभु नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवा, मृत से सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे, बाद सात अहंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुरु से वो अपना काहे फिरो अपागे, देख कसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे। राहो कर कर पाप द्रव किया वर्त

अंत काल पद जाए गे काहे जले क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा को नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता। अंधले त्रिभुवन सूजिया गुर पेट पुनीता। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल कोई कोट अग करे निर्मल पै चीता रहाओ। ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता। जो जो कीनो अपनो तिस अवेदान दीता। सिंह बिलाई होए गयो त्रिन मेर दिखीता। श्रम करते दम आड़ को ते गनी दनीता। कवन वड़ाई कैस गो बे अंत गुनीता। कर कृपा मोह नाम दे नानक दार सरीता। बिलावल महला पंजवा अहम बूंद पर बाद अनीत लोभ रसना साद। लपट कपट ग्रह बेद्या मिथ्या बीखे आद। ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुर प्रसाद। राज मिलख तन जोबना नामे बेन बाद राव। रूप तूप सो गंधता कापर पोगात। मिलत संग अपापिष्ट तन होए दुर्गाद। फिरत फिरत मानु प्या खिन पंगन देहाद। ए अवसर ते चुक्या बै चोन प्रमाद। कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद। सुख सहज नानक आनंद ताके पूरन नाद। बिलावल महला पंजवा चरण पे संत बोयता तरे सागर जेत। मार्ग पे उद्यान में गुर दसे पेत। हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत। उठत बैठत सोवते हर हर हर चेत रहो। पंच चोर आगे पगे जब साध संगेत। पूंजी साबत कनो लाभ ग्रह शोभा सेत। ने चल आसन मिटी चिंत नहीं डोलेत। परम पुलावा मिट गया प्रभ पेखत नेत। गुण गभीर गुण नायका गुण कहिए केत। नानक पाया साध संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना ते तो बीर थारी। मिलत संग सब प्रम मिठे गत पई हमारी। जा दिन पेटे साध मोय ओहा दिन बलिहारी। तन मन अपनो जीरा फिर हाँ वारी रहाओ। एतच ढाई मोहते इतनी दृढ़ तारी। सगल रेन ए मन प्या बिनसी अपधारी। नींद चिंद पर दुख ना एखिन में जारी। दया म्यार निकट पेख नाही दोरारी। तन मन शीतल पे अब मुक्ते संसारी। हीत चीत प्रभ हीत चीत सब प्राण तन नानक दर सारी। बिलावल महला पंजवा टहल करो तेरे दास की पग चारो बाल। मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिले मिलो दयाल। निस्बासर मन अनद होत चितवत केर पाल रहाओ। जगत उदारन साध सा प्रभ तिन लागो पाल। मोको दीजे दान प्रभ संतन पागराल। उक्त स्यान कछ नहीं ना ही कछ का।

नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सज्जना सच्चा पात साहो सिर सांद साहो जिस पास बैठया सोही है सबना दावे साहो।

बरे अब क्यों दौलत दीना तन धन संपा सुख दियो अर जेहे नीके ताम कहो नानक सुनरे मना सिमरत काहे न राम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुनरे मना तेह सिमरत गत होए जेह सिमरत गत पाईऐ तेह भाजरे तैमीता कहो नानक सुनरे मना औद कटत है नीता पांच तत् को तन रचियो जन हो चतर सुजाना जेह ते उपजियो नानका दीन ताहे मैं माना घट घट मैं हर जू बसाए संतन कहो पुकार कहो नानक तेह भज मना।

मरमायदार नारायण गोर सुसार नारायण कहते दम पावत नारायण नारायण नारायण सदा सदा सद सदगुर संगे नारायण नंद नारायण भक्त किन प्रताप नारायण संत को माई बाप नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गाय वासुदेव गोचर गुर मेर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोड महला पदवा जा को रखे रखन हार दसकाय अंग करे निरंकार रहाओ मात ग्रह नय गुण ना जो है काम क्रोध लोभ मोह न को है साध संग जपे निरंकार नंद कर लगे छार राम कवच दास दास ना हो धूत दुष्ट तस बहुत ना है जो जो गर्भ करे सो जाए गरीब दास की भग सुराए जो जो सन पया हर राय सो दास रखे अपने कंठ लाए जे को बहुत करे हंकार ओह खिन महरोता खापु नाल ऐप ही साचा हो मनहार सदा सदा जाई बलिहार अपनी दास रखी कृपा तार नानक के प्रभु प्राणे धार गुण भला बनवा जग रखावा अनूप पार प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप राव ना हो बूदा न हो बाला ना एह रूप नहीं जम गला ना हो गुण से ना हो जाए आदे जुगा भी रहा समाए ना इस दोषन नहीं किस सीत ना इस दुश्मन ना इस मीत ना इस हर्ष नहीं सोग सब किस के सदा मन जोग ना इस बाप नहीं सुनाया परंपर होता है पाप पुण्य का इसलिए कुल लगे सतगुर सब ही जागे तीन गुणा एक सतगुर पाया महामाया का की है छाया अछल अपेद अपेद अछल अशेद अपेद दयाल दीन दयाल सह कृपाल दा की गत मिट कछु न पाए नानक दा कै बल बल गाए गुण महला पंजा सतगुर कै बलहार जाओ सतगुर कै संग राम गुर गाओ संत साध प्रेम प्रसाद गए संत सरण भागी पए राम जपत किछ बेगन न व्यापै गुरु गावे अपना कब जप रहो पाज न जप साधु जितन की पैर को रवाल काम को जैसे तन पे जाए राम रतन वसै मन आए सफल जन्म का प्रवान निर्भर ब्रह्म निकट कर जान पाहि भगत तन चित लाग धन धन का सोय जाग चरण कमल का आधार गुंड गुंड राव सच व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुखे पावे चंद पूरे राग गौर चुगले महला पहला काकी जय को कर प्रसाद कारण नमस्कार पूरे गुरुदेव सफल मूर्त सफल जागृत निरंतर गामी मुख विनाता आठ पहर नाम रंग रता गोर गोविंद गुरु गोपाल अपने दास और गोर प्रहार रहाओ पातशाह साहु निरावती आयो दुष्कृत अहंकार मार बचाए निंदक कै मुख कीनो रोग जय जयकार करै सब लोग संतगुरु कै महा महा मन महा आनंद संतगुरु कै गुरु देव भक्त संतगुरु कै गुरु जो पहि सगल थान निंदक के गए सा सा जन सदा सदा हे पार गुरु के प्रवाहे सगल तह मट जा की शरण निंदक मार पाए सब धरण जन की निंदा करे न कोई जे जो करे सो दुखिया हो यार पहरे जन एक ध्याय जन वाता जन एक न पाए जन नरवैर नंद कर हंकारी जन भाग मन नंद कर वे तारे गुरु कै सिख सतगुरु ते आया जन उभरे नंद कर नंद पाया सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत वचन वरत है हर द्वारे जैसा कोई सो तैसा पाए ਗੁਰ ਸਰ ਪਰਨਾਏ ਸਰ ਪਰ ਜਾਏ ਨਿਰਭਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਧਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਕਿਰਪਾਲਾ ਕੋ ਜਨ ਕੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਗੁਰ ਬਰਿਹਾਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਪੈ ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦ ਬਾਣੀ ਪੱਕਾ ਕੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੇ ਸੁਣੀਆ ਕਹੀਆ ਮਿਲੈ ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਟ ਕਾਰੇ ਰਹੀਆ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦਾ ਕਹੀਆ ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੱਬ ਰਹੀਏ ਰਹਾਓ
संफल से बोले पकारे मूर्ख बोले झाकड़ मारे।

अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू भगवरे रहो। हार जले जैसे लकड़ी का चूल्हा, केस जले जैसे कांच का फूला। कहो कबीर कभी मर जागे दम का दंड मूल बहला के बूंद। आकाश गगन पाताल गगन है, चौदेश गगन रहाई ने।

उनको खाट मुंड पड़ोस कमर पद पोथी हमको चावल को रोटी मुंडिया मुंडिया हुए एक ते मुंडिया बोलत की टेक सुनंदरी लोई पे पीर मुंडिया ने पाच सर कबीर गौण कसम मरे तो नार न रोवे उस रखवारा और होवे रखवारे का हुए विनाश से आगे नरक यहाँ पोगिलास एक सुहागन जग प्यारी सवेर जीवन की नारी राव सुहागन गल सोए हार संत को विचा संसार कार सिगार भय पके आरी संत की ठिठकी फिर विचारी संत भागो पाछे पर प्रसाद मारो डराए साख कियो पिंड प्राण हमको दृष्टि पर हम तिसका भाव जाने प्यो जब हुए कृपा मिले गुरुदेव कहो कबीर अब बार परी संसार के अंत लरी गाँव का सुबह जाक रे नाही आप पैया खुद चाहे भाक अंतर नहीं संतोक बिन सुहागन लागे दुख धन सुहागन मां पवित तपित विच डोले चीत राओ सुहागन कृपन की पूर्ति से बता जब साधु बैठा दरबार शरण तेरी मोको निस्तार सुहागनाथ सुंदरी पगनेवर छनक छनरी जौलक प्रण तौलक संगे नाथ चली बे गुटे सुहागन पवन चली दे बड़े भूपत राजे अच्छे दे सुहाग मुड़वार पांच नारद के मिटवे फूटे कौ कबीर गुर कृपा छूटे गौंड जैसे मंत्र में बलहर न ठार है ना बिना कैसे पार उतरा कुंभ बिना जल न टिकावे साधु बिन ऐसे अगते जावे जारो तिसा जुराम में चेता तन मन अर्पर है मैं केतर आओ जैसे हाल हर बिना जी नहीं बो या सुख बिना कैसे मनी तो या कुंडी बिन का गण चढ़ा या साधु बिन कैसे अवगत जाइए जैसे माता बिन बाल न हुई बिंब बिना कैसे कपड़े तो ही कोट बिना कैसे सुहार साधु बिन नही दरबार जैसे बाजे बिन नहीं लीजा पेरी कसम दो आगन तज ओरी क्या कबीर एक कर करना गुरमुख हो बार नहीं मरना गौंड कूटन सोए जो मन को कूट मन कूटा तो जम पे छूटा कूट कूट मन को सुटी लावे सो कूटन मुक्त बप पावे कूटन किसा कहो संसार सगल बोलन के माई विचार आओ नाचन सोए जो मन सुना चाहे झूठ न पति है पर सचै इस मन अगर पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल बजारी सो जो बजारे सोधे पांच पलीता को प्रभुता नौ नायकी पक्षण सो बजारी हम गुरमाने तस्कर सोए जो तात न कर इंद्री कह जत नाम उचरा कौ कबीर हम ऐसे लखन धन गुरदेव अत रूप विचकन गौंड धन गोपाल धन गुरदेव धन अनाथ उके कल ठहके धन संत जिन्हें ऐसे जानी तिनको मिलबो सारन पानी आदि पुरते हुए अनाथ जपिया नाम अन का सागराओ जपिया नाम जपिया अन अंबा का संगिकावन अन बातो नर होवे तीन पवन अपनी को छोड़ा अन करे पा कान ना सुहागन नाम रंड

जैसे गाय का बाछा छूटला तन छोक तम अपन खुटला नाम जो नरंग पाया गुर पेट लख लखाया जैसे बिता जित नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे ताप निर्मल काम ऐसे राम नामा बिन वापुर नामा राम गौंड पानी नाम देव जीव की कर दू जाय के ओंकार सतगुरु प्रसाद हर हर कर्त में जिस सब परमार को नाम लगतम परमा हर हर कर्त जब पुरारी सोर अंदर की लाख रे नमस्ते रे नमः हर हर कर्त में जिस समय प्राव हर हर नक्ष हरे प्राण अजय मिल कियो वह कुंटा तहान सुवा प्राप्त गंका तेरे सब नंद की पुत्री हर हर कर पूतना तेरे बाल कादनी कपट परिसिमरन द्रौपद सतुदरी गौतम सती सला ने तरीके से कंस मतनी किया ये दान काली को किया प्रणत नाम स्वरी चा जप अपना टही गुण पैरों भूत शीतला तावे कर पान चारू दावे हो तो वे कर मैया लहूं पान दे बदला बंदे मुराओ शिव शिव करते जो नरत्या मर्द चढ़े डौरू टमकावे माँ माई की पूजा करे नरसह नरो करे तू कहियत है आत्मवानी मुक्ति भरी कांच पानी

आज नामे बीठल देखा मोर को सुनचल गिराव पांडे तुमरे का त्रिलोचे का खेत था तीला का खेला तुमरी छोरी लांग तलांग से जाती थी पांडे तुमरा मां जो तो चले आवे देखो था बोधी केकर काना पाका वा कलर का मारे था पांडे तुमरा राम चांदे सो पियाव देखा था राम से थी सर्व रोई करके जो दवाई थी

करै निंद सागरता जावे साका निंद कैसे तरै सर पर जानो नर की कराओ ज्यो ग्रहण करै कुल के त्यार पै नासिका समेत सगली सिमरत श्रवणी सुनै करै निंद कवै नी गुनै ज्यो अन प्रसाद करावै भूम दान शोभा मंडप पावै अपना विकार ग्रहण संडन करै निंद भोजन नी माता निंदा कंकर संसार निंदक का प्रगट पार निंदक सोध साध विचारक और रविदास पापी नरक सिधा रे।

मन सतगुर सेव सुख होई जो इच्छो सोई पल पावो फिर दुख न व्यापै कोई राव काचे भांडे साज निवाजे अंतर जो समय जासा लिख लिखा तो करता है तम तैसे कृत कुमाई मन तन तप किया सब अपना एहो आवन जाना जिन दी आसो चेतना मोए अंत लपटाना जिन किया सो पर जाना हर का मेल पारा भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा राम कली मल्ला पुनो को चरना तल ऊपर आवो ऐसे से कुमाओ आपस ते ऊपर सब जानो तो दरगाह सो पाओ संत व्यास कतो कहानी सर पवित्र नर दे पवित्र अखिन बोला गुरु भगवान गाओ पार पंच छोड़ सहज कर व्यासो झूठा कहो न कोई सतगुरु मिलो नवै नित पावो इनके तत् मिलोई पर चुकावो गुरमुख लिव लावो आत्म चिन्हो पाए निट कर जानो सदा प्रभाज किस्यों करो बुराई सतगुरु मिलिया मारंग मुक्ता सहज मिले स्वामी धन धन से जन जिन कल मैं हर पाया जन नान सत गुरबानी राम कली महला पंजवा आप धारकना जापत दुकाना व्यापै मन रोगी सदा नंद गुर पूरा पाया चौधरी सगल वियोगनी ए विधाय मन चोगनी बहु सोग रोग लोग ना व्यापै तैं हार हार हार हार रस भोगनी राओ सुरख पितरा मृत पवित्रा पाया अल पवित्र लोगनी आगा कर सदा सुख पंचाय जात का पे कुमार गुणी नै सब सच्चे जल नहीं पवना तैं आकार नहीं वेदनी सतगुर जोग का तां निवासा जय अवगत नाथ अगंत नी तन मन हर का धन सब हर का हर के गुणों का गुण कौ नानक हम तुम गुर खोई है अम्बै अम्ब मिलोग निराम कली मल्ला पन्ना तरा गुण रत निरारी साधक सिद्ध न जाना रत्न कोठरी अम्ब संपूर्ण साधक का खजाना है आचार्य कुछ कह न जाए बासा गोचर पाए राओ बोल नहीं कुछ करना जोगा क्या को कह सुनावा कथन कहन को सो जीनाई जो पेका तिस मने आवा सोई जान करना हमारा कीता जा बेचारा अपनी गंध आपे जाना और आपे पूर भंडारा ऐसा रसम समझा क्या तृप्त रहा गाय कौ नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई राम कली महला पंजवा अंगीकार किया प्रभु अपने बैरी सगले साधे जिमदारी है जग लुटिया ते बैरी लै बाते सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रसमानी नौ जुटी प्रवासा के रड़ाओ चेतना आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखो आरा बे प्रभाव रहता स्वामी नाम के आधारा पूर्ण होए मिलो सुखदाई उन्ना काई पाता तत् सार परम पद पाया छोड़ न खत्म जाता भर न साकुन जैसा तुम्हें सहचे लख पारा अतुलता अडोल स्वामी नानक कसम हमारा राम कली महला पंजवा तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोला नहीं तम कैसे ताती

तो सागर हम हंस तुम्हारे तुम मेहमान कलाला तुम देवो तिल शंख न मान हो हम पुंचा सरा निंगाला हम बारक तुम पिता हमारे तुम बुक देवो खीरा हम खेले सब लाट लडावे तुम सब गुंजीरा तुम पूर्ण पुर रहे संपूर्ण हम पे संग गाय मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कर न जाए राम कली महला पंजमा कर कर ताल पकाव नैनो मत बजर बाबा करनो मध मा श्री बाजा जे बातुन अगा जा निरत करे कर मनवा नाचे आने घूंगर साजा राम तुम निरत करी पीकर देखना आते आला जेता सात सिगारी राहो आकार मंडली धर्म सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करते केला जलते उपदोवा पंच तज कर पुत्रा कि न कि तुम लावा होवा चंद सूर्य दे चरे चरागा चौंकट पीतर राके दस पातो पंच संगीता एक है पीतर साथी भेन भेन एक आप का सब निरारी पाके घर घर नित होगा दिन राति काटल जतूरा एक निचावे एक भावे एक आए जाए तूरा

कली महला पंचमा ओंकार एक तुम एक एक रागल पै एकादशी एक दिखावा एक व्यापा एका सुरती का ही सेवा एको गुरते जाप पलो पलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा गुण गाओ छोड़ माया के तन स्वराओ पंच बजित्र कर संतोखा सा सरण लचाले बाजा मानता पंचाना पवन बिगा काल तेरी फिर न हो गए कवि ये चल पंथ फल है नारदी नरर जाना दूरे कुंग पर क्या सूर्य साजन दिखावे पावे तो नृत्य कार्य जन्म न आवे जे को अपने ठाकुर पावे कोट माफी के गावे सात संत की जावो टेकाओ नानक कृष्ण राम कली मल्ला पिंबा कोई बोले राम राम कोई खुदाई कोई सेवा गुसैया कोई अलाई कारण करण करीम कृपा तारिम राव कोई नावे तीर्थ कोई राज जाए कोई करे पूजा कोई सर निवाए कोई पढ़े वेद कोई कतिर कोई ओढ़ा नील कोई सुफेद कोई कह तुरख कोई कह हिंदू कोई वाचा पिस्त कोई सुर हिंदू कहो नानक जन हुकम पछाता प्रभु साहिब कथन के जाता राम कोई महला पंजवा पवना मैं पवन समाया ज्योति मैं ज्योत नाल जाया माटी माटी होई एक प्रोभना हर के कवन टे कौन हारे कौन हुआ ब्रह्म ज्ञानी मूल पर विचारा ये तो चल प्यारा हो अगली कश खबर न पाए रोबना हारते हो सदाई पर मौके बांधे बांध सब प्या पकलाए अंधे ए तो रचन रचा करतार आप ते जाप रूप में पार ना कुंभवा नाम करना मरना जोग नै बिन साहब नासी हो गए जो ही जानो सो ही ना ही जानना हरे को बल जाओ कौन नानक गुर पर चुका है ना कोई मरण न हो जाए राम करी मिला पहला

पंडित वेद विचार पंडित मन का क्रोध निवार पंडित राव आ गए राख साल ग्राम मन कीनो दया दिस विश्राम तिलक चरावै पाई पाई लोक बचारा यंत कमाए खट कर माया रासन धोती भगत ग्रह पंडित पोती माला फेरा मंगल पोती विशो पंड कमाए त्रै गुण की ओ सुतरी माए चतुर वेद पूर्ण हर नाय नानक सरणी पाए राम कुली महला पंजवा कोट विघन नहीं आवे नेर अनक माया ताकि चेर अनक पाप ताकि पानी गार जाको माया पै करतार जसा साई कोई भगवान अनक जतन कर संभाव करता राख्या कीता कौन की जित चला पावन बेअंत महिमा ताकि गेत कबरन बालो जाइए ताकि सन ध्यान अनक प्रकार किया तिन दहान भगत सोई कल मैं प्रवान जाको ठाकुर दिया मान सत्संग मिल पई प्रकाश सुख आसन वस पूरा सब विश्वास नानक होए दासन दास राम कनी मल्ला पुन्ना दोस्तन दीजा काम लोग जो कुमावन सोई पोगे आपन कर्म अपनी बांधे आपन जान माया तान ऐसे जाने संत नि प्रकाश पै पूरे दोष निरा तन तन तत विद्या विस्तार है अवर गव चलन और राज रंग सब पूरे ना बिनाओ जासे तोर परम भोले पालन कारी संग मंदिर सब पसारी सो गर्क मैं दे बिर धानी साखते भी करत बेगानी घर का नाम अमृत कल माए ਇਹੋ ਨਿਧਾਨਾ ਸਾਧੂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁੱਟਾ ਘਾਟ ਘਾਟ ਰਮਈਆ ਤੈਨੇ ਡਿਟਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਨੋ ਪੰਜ ਸੌਤਾਂ ਪੂਰਨ ਨਾਥ ਆਨੰਦ ਬਾਜਾ ਚਰਨ ਸਵਾਦ ਕੇ ਕਰਾ ਸੰਤ ਔਰ ਲੋਕ ਪਾਦੋ ਪੂਰਨ ਜੋ ਸੁਖ ਸਾਜ ਆਨੰਦ ਭਾਵਨ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਦਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਾਰੋ ਸੁਹਾ ਸਿਮਰਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਬਿਰਲੇ ਪਾਓ ਵਿਸਰਾਮ ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰ ਰਿੰਡੇ ਚੱਲੇ ਆਸਨ ਬੇਸੁਮਾਰ ਡਿਗਨ ਡੁਲੈ ਕਤੂ ਨ ਧਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੁਛ ਮਹਿਲ ਪਾਵੈ ਭਰਮ ਪੈ ਬੋ ਨ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਆਪੇ

पूरी काम जाकर दिवस वरनाम सगल सुख आनंद रोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आय न जाए डोले कथनाई जाके नाम बस मनवाय दीनदयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिया उतरै चिंद नानको गुरदिया नाम संतन की टहल संता काम राम कली महला पंजवा बीज मंत्र हर कीर्तन गाओ आज्ञा मिलन तावे तो गुरपुरे की समिला जन्म जन्म का सोया जागा हर चाप चपला गुर कृपा ते हृदय वसै पवन पाप लराओ नाम निदान तय मन अटल ता छुट्टे माया के पटल गुर का सब अमृत रस पियो ता तेरा वही निर्मल जियो सोदत सोदत सोद विचारा दिन नर पग में छकार सो हर भजन साध का संग मन तन रापे हर करन छोट से अनुभव मन बिन हर नाम जन कर दे तारी गोविंद गोसाई हर हर नानक टेक टिकाई राम कली महला पंजा संत संग राम रंग के लिए आ गया जन सुन होए न लिए अहम बोध का पै विनाश से धर्म तो ही सगली नाश राम नाम गुण गाय पंडित कर्म काढ़ अंकार न काजा कुशल से की कर जाए पंडित राव हर का जस नित लिया लाभ पूर्ण पै मनोरथ साहब दुख नट्टा सब कर में आया संत प्रसाद कमल उत्साह नाम रतन जन पाया दान तिजन हुए सगल निदान संतोख आया मन पूरा पाए फिर पर मांगन का ये जाए हर की कथा संत वित्ते देवा भक्त पाई गात मत सो प्रवान जिस सदा वसाई नानक तेजन उत्तम पाए राम कली महला पुन्ना को कर पति न आई हा प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दई ताबे चरनी आए पे सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काय गुरपुरा भेट ते उदार राव जब उसको कोई देवा मान तब आप सुपर का गुमान जब उसको कोई मन पर रहता वो सेव सेवा करे मुख वे रावे अंत टगावे एक टटोरो कहीं न समावे उन मोहे बहुते ब्रह्मांड राम जनी किन्नी खांड खांड जो मांगा सो पुकार रहे इस संग राचाए सो कछु न लाए ऐसा त्याग सत्संग करे बुढ़पागी नानको तर राम कली महला पंजवा आत्म में राम सर में फेक पूर्ण पूर्ण रह प्रभु एक रत्न मोल हृदय में जान अपनी वस्तु आप शांति अमृत संतन प्रसाद बड़े भाग होगा तो पाई है बिर जीवा क्या जाना स्वाद राव अठ दस वेद सुने क्या डोरा कोट प्रकाश में जिसन देरा पशु प्रीत का संग रचा जिस नहीं बुझा वसु कित विदु बुझा जान हर रहा प्रभु जान उत्पत प्रकृत संगान विक्स विक्स अपना प्रभु रखावे नानक तेन जम डेढ़ ना आवे राम कली महला पुन दिन नाम की ओप देते हर तन रास नास ये बित काटी बंदर सेवा लाई घर हर पर तुम गुण गाय बाजे आनो तो बाजा रस रस गुण गावे आज ने अपने गुरुदेव ने बाजा रहा आए बने वो पूर्वला भाग जन्म जन्म का सोया जाग गई किलान साथ का संग मन तन रातो हर का रंग राखे राख न हर दयाल ना किच सेवा ना त्रिकाल कर कृपा प्रभु कीनु कीनी दया बूढ़ दुख में काट ले आसन सुन उपजो मन में चौवाट पर हर के गुण गाओ गावत गावत परमगत पाई गुर प्रसाद नाम के लिए बुलाए राम कली महला पुण्य कौड़ी बदला त्यागा रत्न छोड़ जाए ताओ का जतन सो संचा जो उच्छे बात माया सोया छोड़ जात अपागे ते लाज नहीं सुख सागर पूर्ण पूर्ण विश्व हरन चेत मन माई राव अमृत कौरा बिका मिट्टी साग की बद नैनो डिटी पूर्व कपट अहंकार जाना नाम संत जन बिछोड़े साना माया कारण साधी चिवर मार मुख अपना उस्तत करण नरपो निरंकार अवतार तेसों प्रीतना करे गवार सब सांसर साचा स्वामी पूर्वा पूरा पाशा वो मग लट्ट ब्रह्म ग्रह नान करे तेरी मेरे काम करी मंदा पीमा प्राण दिन सपो आर नवा गया त्रिकप्पा उसका सला आनंद न होगी सो कवना बहता हूँ मैं रो को जो संतवार ब्रह्म ज्ञानी विस्मन विस्म पे समाधा परम गता वर समर प्राणी राव घर मन देखो सगल विचार नाम बिना को सगन तार सगल उपाव में चाल संग पावजल तरीके प्रभ का रंग दे तो इन उत्तर मेल गो में प्या पै दुबदा पैल हार औकर जो जन काय ता करो बिना ता करो सड़ मिट जाए कर कृपा पार बन दे आले मन ते कबनो विश्व गोपाल तेरे दास की होवा तुर नानक प्रभ सरदा पूर राम करी मंदा पंजमा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुद बन दूजा ना ही कोई तू सम्राट पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याय पूरा जिस कर्म तरन तारण प्रभ त्योरो नौ एका शरण गई मंदिरा तोदगन दूजा नाई टाओ राव जाप जाप जीवा तेरा नवा गया दर गया टाओ
दुखन देरा मनते जाए दुर्मत बिनसा सराचा अरणाय चरण कमल सिंह लागे प्रीत गुर पूरे की निर्मल रीत पाप पागा निरप मन वसै अमृत नाम रसना नित जपै कोट चंद के काटे पाए पाया लाभ सच्चा तन लाए कोट नावा कोट भंडार नानक भगत सोहे दर द्वारा कोई मंदा पुनर पंजेर लाल सत संतोख ज्ञान रत्न जवेहर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहजा कपोता और भगता हवाला होता।

प्रभु तुम ही कारण करन चरण कमल अर शरण मंथन अरोहित आया आनंदर रूप दिखा तिसी की ओर सदीव जाके की मैं जी सिमरत अर करत निधान राखनार निदान सर किरण हो विजय आ मिटाय मिली जय अंतिम तय नाम सब नानक काम राम करी महला पंजमा कारण करन करीम सर्व बल रहीम अला अला के अपार खुद खुदाई वाट विस्मार ओम नमो भगवंत गोसाई काल करब रहा सर्व ठाय राओ जगनाथ जग जीवन माधो ओ पंजन रित माया राधो रिकी किस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद मेहरबान मौला तू ही एक कृपा कमर से दिला कमल करयाक कुरान तेते पाक नारायण नारायण दयाल परम तराम घट घट आधार वास्ते वस्ते सब ठाए लीला कचर कि न जाए मेहर दया कर करनहार भक्त बंदगी दे सृजनहार ओ नानक गुर कोय परम एक वालो परम राम कली मल्ला पुना को जन के से पाप हर हर जपना संताप गुर के चन कौन मन वसै महा विकार तक से गोपाल को दस गौ प्राण एकत तथा सचि प्रपूरण ज्योति जो समण राव कृष्ण पुसम न सिसम प्रसाद जत अपना श्री रंग दस प्रभु से प्रमाण हर मिलना के अनुष्ठानी मिटे जंजाल हो प्रभु जी हाल गुर का दर्शन निहाल परा पुरला कर्म बने आया हर के गुण संभाया हर के संसार प्रभाव संजन संसार दास के ऋण पाए जे कोई नानक तिसके परम गात राम कली महला पंजवा दर्शन को जाई या कुर्बान चरण कमल हृदय तब ध्यान तुर संतन की मस्त हिलाए जन्म जन के दुर्मत मल जाए जिस पेट मिटा अभवान पार सब नदरिया वह कर कृपा पूर्ण भगवान राव गुर की कीर्त जपिया हर नौ गुर की भगत सदा गाओ गुर के सुरत मिट कर जान गुर का सो सत्कर्मान गुर बचने संसार सुख दुख कदना व्यापक कृष्णा भूख मन संतोष सब गुर राजे जप गोविंद पढ़ते सब काजे गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुरदाता दयाल बख्शन गुर चरणी जाका मन लागा नानक दास पूर्ण भागा राम कली महला पंजवा इस प्रभासा विचरा भवन मूड मुगद तेरा संगी कवन राम संगी तिस गत जाने पंच पटवारे संगीत करमान सो कर सेव जित उदरा मीत गुण गोबिंद रविया दिन राति सा संक्रमण के पितराव जन भयान अंकार हर वार जितन अवा विकास साध परम धर्म मा दुख पाया हरि न जाय दुत्र माय काम न आवा सो कार कमावे आप की जाति खावे रागुण को दूसर नहीं कोय तो निस्तरिय जाओ कृपा हो ये पथ मेर पर तेरो नाम अपने दास को कीजा जान कर कृपा प्रगट कर मेरी शरण गए नानक प्रभु तेरी राम कली महला पंजवा ए लोके सुख पाया नहीं भेट धर्म राया हर दरगाह शोभा बंत पुन गर्भ नहीं संत जानी संत की मित्रा ये कर कृपा दीन वर नामा पूर्व संजोग मेरा गुर के चरण चित लागा तन तन संजोग सब पागा संत की तूर लागी मेरे मते पेलवक दुख सगले मेरे लाते साथ की सच टहल कमाणी तब होए मन सुध प्राणी जन का सबल दर्श डिटा नाम प्रभु का बूटा मिटाने सब काल कलेस जिससे उपजे तिसने प्रवेश रखे अनुप गोविंद प्रपुर नानक बख्शन राम कली महला पंजवा गौ को चारे सार दो कौडी काला गुआ मोल बकरी गोस्ते प्रकाले अपना प्राव नदर निहाल पंजा प्रीतम परम मेरे वर्ण सागो भाव गुण तेरे राव दिस मासना काज बिलाई माता सब फिर सब पाई करण हार प्रविरता बूटा पाती मछली का जाला टूटा सूखे पर सारे चलो ओ चाहे तल बोले कमला लो कोय अगन नारी सागर देव सेवक अपनी नायो सेवक कृष्णा का करेदार प्रा मेरा सदा दे और संत न का सदा साई चल मन नाम से नारायण कल मल्ला पंजवा पंच सिंह राके प्रमार दस बगे आड़ी ले निवार तीना वर्त की चुकी केर सासन चुके पपेर सिमर सिमर जीवा गोबिंद कर कृपा राख्यो दास अपना सदा सदा सत्या बख्शिंदराओ दास के तृण पाप सुमेर जप तपना पूजे प्रपैर आनंद रूप प्रगट्यो सब तान प्रेम भगत चोरी सुखवान सागर तरयो बाछर खोज के न पायो न रोज सिंध समायो घट के माही करना हर को किचा चर सुनाई जो छुटो तो जाय पयाल जो कर जत नर निहाल पाप पुन अमरा वस नाही रस कर सुनान गुण गाए
राम कली माला पंजमा नातन तेरा नाम अंतो है माया मोय व्याप्या तो एक कदम करा गाट जन से रचन चार काल चतुर के हर चरण कमल शरणाय मना राम नाम जप संग साय गुरमुख पाव सत न रहो होने काज न हो वे पूरे काम क्रोध मत साजी चोरे कर विकार जियर कर ताई गाप संग तस्व जय तर तो अंक चल जाने कौडी कौडी को काल चिर जाने जिन दिया तिसन चित्या मूल नित्या लोभ ना उतर सूल पार पंजा पैतियाल ए मनोवस्था दुर्वाल आस्ते कमलन डी नो लाए नानक सच सत समय राम कली माला पंजमा राजा राम की शरण आए निरपो पै गोविंद गुण गावत सत्संग दुख जाय राव जा कह राम राम बसै मन माही सो जन दुत्र पेक्त नाय सगले का सवार अपने हर हर नाम रसन नित जपने जिस कह मस्तक हाथ गुर तरै सो दास दिसा काय करै जन्म मरण के चौकी कानपुर गुरु पर कुर्बान गुर परमेश्वर भेट निहाल सो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिस कृपा करै सास सो पाव जल तरै अमृत पीवो सात प्यारे मुख उचल सच दरबारे आनंद कर